संत मंडल मह जाम किछु ना कहै, संत सांग होए निर्मल बाणी, संत मंडल मह नाम वखाणी, संत मंडल का निहचल आसन, संत मंडल मह पाप विनाशन, संत मंडल मह निर्मल कथा, संत सांग हमै दुख नसा, संत मंडल का नहीं विनाश, संत मंडल मह हार गुणता।

साध संगत पाई आवट भागी गुरमुख हर हर नाम कहो रहाओ बंधन मात पिता सुत बनता बंधन कर्म धर्म हाओ करता बंधन काटन हा

जन्म जन्म का सोया जागा कर कृपा अपनी सेवा लाए साधु संग सर्व सुख पाए रहाओ रोग दोख गुर शब्द निवारे नाम औखद मन भीतर सारे गुर भेटत मन भया आनंद सर्ब निधान नाम भगवंत जन्म मरण की मिटी जम त्रास साध संगत।

आय सर्व सुख वसहै मन आय सिमर मना तू साचा सोय हालत पलत तुमरी गात होय रहाओ पुरख निरंजन सृजनहार जीय जंत देवै आहार कोट खते खिन बख्सनहार भगत पाय।

0: सिमरन छाड परम गात चाहै मूल बिना साखा कत आहै।
1: कत पाठ ते साखा पाठ बोले बोलने साखा जा कत नहीं करना जिवें उच्चारण किया गया है मूल बिना साखा कत आहै। हांजी।

का निवास। तिस गुर कहो सद करी नमस्कार, तिस गुर कहो सद जाओ बलिहार। सतगुर के चरण धोए धोए पीवा, गुर नानक जप जप सद जीवा।

जन्म जन्म के किलविख दुख काट है, दुविधा रत्ती ना राई। हम मूढ़ मुग्ध किछ बुझह नाही, तू आपे देह बुझाई। जो तुद भावै सोई करसी, अवर न करना जाई। जगत उपाय तुद धंधै लाया, भूंडी कार कमाई। जन्म पदार्थ जूवै हारिया, सबदै सुरत ना पाई। मनमुख मरह तिन किछु न सूझै, दुर्मत अज्ञान अंधारा। भव जल पार न पावह कबही, डूब मुए बिन गुर सिर भारा। साचे शब्द रत्ते जन साचे, हर प्रभ आप मिलाए। गुर की बाणी शब्द पछाती, साच रहे लिव लाए। तू आप निर्मल, तेरे जन है निर्मल, गुर कै शब्द विचारे। नानक तिन कै सद बलिहारे, राम नाम उर धारे। भैरव महला पंजवा, अष्टपदिया घर दूजा। एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, जिस नाम हृदय सोई वड राजा। जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा, जिस नाम हृदय तिन कोट धन पाए। नाम बिना जन्म बिरथा जाए, तिस सालाही जिस हर तन रास। सो वड भागी जिस गुरमस्तक हाथ रहाओ। जिस नाम हृदय तिस कोट कई सैना, जिस नाम हृदय तिस सहज सुखैना। जिस नाम हृदय सो शीतल हुआ, नाम बिना त्रिग जीवन मुआ। जिस नाम हृदय सो जीवन मुक्ता, जिस नाम हृदय तिस सब ही जुगता। जिस नाम हृदय तिन नौ निध पाई, नाम बिना भ्रम आवै जाई। जिस नाम हृदय सो वे परवाहा, जिस नाम हृदय तिस सद ही लाहा। जिस नाम हृदय तिस वड परवारा, नाम बिना मनमुख गावारा। जिस नाम हृदय तिस निःचल आसन, जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन। जिस नाम हृदय सो साचा साहो, नामहीन नाही पत वे साहो। जिस नाम हृदय सो सब मह जाता, जिस नाम हृदय सो पुरख विधाता। जिस नाम हृदय सो सब ते ऊंचा, नाम बिना भ्रम जोनी मूचा। जिस नाम हृदय तिस प्रगट पहारा, जिस नाम हृदय तिस मिटिया अंधारा। जिस नाम हृदय सो पुरख परवान, नाम बिना फिर आवण जान। तिन नाम पाया जिस

चंदन कै संग तरवर बिगरेओ सो तरवर चंदन होए निबरेओ। पारस कै संग तांबा बिगरेओ सो तांबा कंचन होए निबरेओ। संतन संग कबीरा बिगरेओ सो कबीर राम मै होए निबरेओ। माथे तिलक हथ माला बाना लोगन राम खिलौना जाना। जब हौ बौरा तौ राम तोरा लोग मर्म कह जान मोरा। रहाओ तोरा ना पाती पूजाओ ना देवा राम भगत बिन निफल सेवा। सतगुर पूजाओ सदा सदा मनावो ऐसी सेव दरगह सुख पावो। लोग कहे कबीर बौराना कबीर का मर्म राम पहचाना। उल्ट जात कुल दो बिसारी सुन सहज मह बुन।

क्रोध प्रधान महाबड़ दुंदर तह मनमावासी राजा स्वाद स्नाह टोप ममता को कबुद्ध कमान चढ़ाई।

अबरन बरन स्यों मन ही प्रीत, हमै गावन गावह गीत। अनहद शब्द होत चुहनकार, जह पौड़े प्रभ श्री गोपाल। खंडल मंडल मंडल मंडा, त्रे अस्थान तीन त्रे खंडा। अगम अगोचर रहया अब अंत, पार न पावै को धरनी धर्मंत। कदली पोहप धूप परगास, राज पंकज मह लियो निवास। द्वादश दाल अब अंत।

कबहु न तूट स रहया समाय, नामे चित लाया सच नाय। जैसी प्रीत बारिक अर माता, ऐसा हर सेती मान रात।

बताओ जो तुह राखै पीत पीत अंबर त्रिभवन धनी थंब माह हर भाखै हर नाखस जिन नख बदारियो सुर नर किए सनाथा कह नाम देव हम नर हर त्याव है राम अपह पा।

0: बिस्मिल गऊ देहो जीवाए ना तर गर्दन मारो ठाए।
1: बिस्मिल गऊ इथे विश्राम लाउणा, बिस्मिल गऊ देहो जीवाए ना तर गर्दन मारो ठाए।
0: बादशाह ऐसी क्यों होए बिस्मिल किया ना जीवै कोए।
1: साध संगत दी इह वी इक कौतक ही भगत जी दर्शा रहे हन, जदों भगत जी दे नाल भगत जी नूं साध संगत जी परेशान कीता जा रहा सी, उहनां नूं कहा जा रहा सी करामात विखावो, जे तुसीं करामात नहीं करन दिखाउणी ते इस्लाम नूं कबूल कर लो तां भगत जी दे अगे शर्त रखी गई सी, जां ते मरी हुई गां नूं जिउंदिआं करो, जे मरी गां नहीं जिउंदिआं करनी ते इस्लाम नूं कबूल करो जां पंडतां पुणतां दीआं गल्लां मल्लो। तां उह सारे उस समें दी विथिआ नूं भगत जी अपनी मुबारक रसना तों दर्शा रहे हन। सुल्तान पूछै सुन बेनामा, सुल्तान जिहड़ा उस समें दा साध संगत जी राजा सीगा ना, मुहम्मद बिन तुगलक बादशाह उस समें बहुत जारी जिहड़ी उहदी प्यारी गऊ सी ना, उह मर गई। उस संबंधी भगत जी वंगार के कहिंदा कि जां उह नामिया मेरा तां जां तां मेरी गऊ दिखा जिहड़ी जिउंदी कर दे, तैनूं करामाती कहिंदे ने लोक, नहीं तां फिर इधर नूं आ जा, नहीं तां तैनूं मार देंगा। ऐसे वचन भगत जी दे अगे रखे तो फिर इत्थे परमेशर ने किवें भगत जी दी लाज रखी इज्जत रखी, उह सारे बयान जो भी उस समय साध संगत जी उस दे नाल होए सुल्तान दे नाल भगत जी दसदे होए उस परमेशर दी खेड नूं दसदे हन। प्यार सहित सरवण करिए।

0: बादशाह चढ़ियो अहंकार गाज हस्ती दीनो चमकार।
1: गाज नाम हाथी दा हुंदा है, बादशाह नू हंकार चढ़ गया भी मेरी गल नू मोड़िया किवें। हाथी नू उन्हें साध संगत जी जेड़ा है वह भगत जी वल भेज दिता कि इनू पैरां थले कुचल देना कर।
0: रुदन करै नामे की माए छोड़ राम की ना पजहै खुदाए।
1: कहन लगी मां जदों हाथी भगत जी वालों तुर के आया ते मां कहन लगी भगत जी दी कहिंदी छोड़ राम छड़ दे राम नू नाम देव की ना पजहै खुदाए, तू खुदा नू क्यों नहीं भजदा, फर्क ते दोवां विच कोई नहीं है, तेनू राम दा नां छड़ के खुदा दा लैण लग पा।
0: ना हो तेरा पुंगड़ा ना तू मेरी माए।
1: धक्के दे नाल किसे नूं धर्म नहीं साध संगत जी गल दे विच पाया जा सकदा। भगत जी ने उत्थे ही अपनी मां नूं वचन कह दिता ना हो तेरा पुंगड़ा ना मैं तेरा बचना बच्चा हाँ ना तू मेरी माए, ना तू मेरी माँ है। जे तू रब दे नाम नूं धक्के दे नाल किसे होर दे द्वारा जपाउण दी गल करदी है, ईमान तों डोलण दी गल करदी है, तू मेरी माँ नहीं ते मैं तेरा बच्चा नहीं।
0: पिंड पड़े ताओ हर गुण गाए करै गजिंद सुंड की चोट नामा उबरै हर की ओट।
1: हाथी जदों आया ते सुंड दे नाल भगत जी नूं चोटा मारन लगा ते भगत जी रब दा नाम जपदे हन।
0: काजी मुल्ला करै सलाम इन हिंदू मेरा मलिया मान बादशाह।
2: 1550 KRPI रेडियो ते तुसी सुन रहे सी लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
3: यू आर लिसनिंग टू KRPI 1550 रेडियो फर्नडेल वाशिंगटन।

गुरु रूप सत्संग जीओ फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धार्मिक पुरुषों ने खास करके धार्मिक लिखारी, साहित्यकार, विद्वान, उन्हां दा ऐसा कहना है कि मनुखां नूं पंज श्रेणियां विच वंडिया जा सकदा है, या इंज कह लईए मनुख धार्मिक दृष्टिकोण दे मुताबक पंज तरां दे ही हुंदे ने। ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਚੌਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਵੀਂ, प्रथम श्रेणी, पहली श्रेणी, इसनों वो इस तरह बयान कर देने। कुछ पूर्ण पुरख जो पूर्ण हो गए, ते पूर्ण कदों होंदा है मनुख जद पूर्ण नाल जुड़दा है। पूरा प्रभ आराधया, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। जितने चिर तक पूरे दी प्राप्ति नहीं है, मनुख दा जन्म अधूरा है, जीवन अधूरा है, मरण भी अधूरा है। मरण इस वास्ते अधूरा है, तन ते खाक हो गया, राख हो गया, मन फिर जन्म लेने वास्ते तैयार हो गया। दूजा चोला, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए। भाई गुरदास जी कहिंदे ने कई जन्मां तों मन वासना वस हो के बार बार शरीर धारण करदा रहा, चोला बदलदा रहा। शरीर दे मरण दे नाल वासना नहीं मरदी, शरीर दी मौत हंकार दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत लोभ दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत विकारां दी मौत

सदा जवान रहेंदा, अहंकार सदा जवान रहेंदा, विकार सदा जवान रहेंदा, वासना सदा जवान रहेंदी। अगर शरीर दी मौत ही वासना दी मौत आउंदी, मैं फिर दोहरावां इस सत्संग दी लोड़ नहीं सी, कथा कीर्तन करन दी ते सुनन दी लोड़ नहीं सी, दान पुन जप तप दी लोड़ नहीं सी। शरीर दी मौत वासना दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत हंकार दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत लोभ दी मौत नहीं है। शरीर बिरध हो गया, लोभ ते जवान है, बुढ़ा आंदा ही नहीं। शरीर ते बिरध हो गया, वासना ते बिरध होंदी नहीं, जवान है। शरीर बिरध हो गया, अहंकार ते जवान खड़ा। तो ये जवान वासना अगला जन्म करा देगी, अगला जन्म करा दे। शरीर मर भी जाता है, वासना नहीं मरती। शरीर मर जाता है, लोभ नहीं मरता। भाई साहब भाई गुरदास जी धन गुरु नानक देव जी महाराज के उच्चारण किए आसा दीवार दे श्लोक का इंज खुलासा करते हैं, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए, फिर फेर वटाइए ज्ञानी होए मरम को पाए। कोई विरला ज्ञानी इस रमज न समझदा कि शरीर मर जाता है, वासना नहीं मरती। शरीर मर जाता है, लोभ नहीं मरता। शरीर मर जाता है, अहंकार नहीं मरता। तन की मौत हो जाती है, मन की नहीं आती। वो फिर दूसरा तन धारण कर लेता। वासना मर गई है, तन की मौत नहीं। इन्हों कहते जीवन मुक्त। हंकार पे मर गया है, तन अजय जिंदा है। इन्हों कहने जीवद्या जी मुकत है, मुकत। कहत कबीर जो हर ध्यावे जीवत बंधन तोरे, सारे बंधन टुट गए। बंधना दे चे नहीं जी रहा। हंकार का बंधन आंदा, लोभ का बंधन आंदा, वासना का बंधन आंदा, सब तोड़ दिते ने, सब टुट गए। तन की मौत ते नहीं हुई, हंकार की मौत हो गई। शरीर ते नहीं मरिया, वासना मर गई है। शरीर ते नहीं मरिया, लोभ मर गया। बड़ी साधना कीती होनी है, बड़ा जप तप कीता होना है, अमृत वेले उठ के बड़ी ध्यान साधना कीती होनी है, उंज ते वासना नहीं मरती, उंज ते लोभ नहीं मरता, सिर्फ तन मर जाता है। प्रकृति एक दिन तन नू बुढ़ा कर देंदी है, मन नू बिरद नहीं करती। प्रकृति एक दिन तन नू खत्म कर देंदी है, मन नू खत्म नहीं करती। जमना जीवना मरना प्राकृतिक है, प्रभु नाल मिलना पूर्ण होना प्राकृतिक नहीं है। प्रकृति तो बाहर आना है। तो हुण मैं फिर दोहरावां, इस चक्कर च ना पैणा। कई इस तरह सोचते रहिंदे ने, जवान बुढ़े होवांगे अमृत छक लवांगे। बुढ़े होंदे होंदे तक वासना होर जवान होवेगी। रोज़ रोज़ वासना जवान आउंदी है, बुढ़ी नहीं आउंदी। रोज़ रोज़ तन बुढ़ा होंदा, रोज़ रोज़ लोग जवान हो रहे हैं, बलवान हो रहे हैं, रोज़ रोज़ तन कमज़ोर हो रहा है, निर्बल हो रहा है। रोज रोज हंकार ताकतवर हो रहा है, रोज रोज तन कमजोर हो रहा है। तन दी मौत वासना दी मौत नहीं है, तन दी मौत अहंकार दी मौत नहीं है, तन दी मौत लोभ दी मौत नहीं है। बच्चे दा तन छोटा है, उम्र छोटी है, वासना छोटी है, लोभ छोटा है, अहंकार छोटा है। जवान है, अहंकार जवान हो गया, लोभ जवान हो गया, वासना बड़ी प्रबल जवान हो गई है, तन बुढ़ा हो गया, कमजोर हो गया, लोभ अहंकार वासना

संतपना की है। पैगंबर किसनों कहते ने, अवतार किसनों कहते ने, पूरन संत किसनों कहते ने, फकीरी चीस्त, ये सिर्फ दो शब्दां विच, दो बोलां विच इतना वड्डा सवाल। फकीरी चीस्त, फकीरी क्या है, संतपना की है। गुरु नानक देव जी महाराज जवाब देंदे ने, इब्तदाए फकीरी फना अस्त, इंतहाए फकीरी बकास्त। किसे उच्चे आदर्श लई अपने आप नू निछावर कर देना, कुर्बान कर देना, मिटा देना, और हमेशा लई अमर तत् दी प्राप्ति कर लेना, बस इसे नू फकीरी कहते। यही संतपण है। इस सवाल जवाब में फिर थोड़े सामने रखा जन्म साखी चने। फकीरी चीस्त, फकीरी की है, फकीर किसनों कहते ने, संत किसनों कहते ने। उस दिन भी मैं अर्ज की थी सी, संत दिखाई देना एक श्रृंगार है, संत हो जाना एक तपस्या है, मेहनत है, कठोर मेहनत है। संत दिखाई दे जाना ते संत नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते मुर्दा शिंगारे आया और कुछ भी नहीं है। नाम बिना जेता व्यवहार, जो मेरे तक मिथिया श्रृंगार, ये मुर्दे नु शिंगारिया गया। धार्मिक लिबास ते है, धार्मिक जीवन नहीं है, धार्मिक जिंदगी नहीं है, सिर्फ लिबास ही लिबास। फकीरी चीस्त, फकीरी किसनों कहते ने, इब्तिदाए फकीरी फनास्त, इंतहाए फकीरी बकास्त। किसे उच्चे आदर्श लई अपने आप नू कुर्बान कर देना, मिटा देना, और हमेशा लई अमर तत् दी प्राप्ति कर लेनी, बस इस नू फकीरी कहते ने। गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने जीवन दे राही अर्थ सामने रख दिते। कहिंदे ने मनुख नूं तीन घटनावां तो गुजरना पैंदा, जन्म जीवन मरण। जन्म होया होवेगा, जी रहा होवेगा, मर गया होवेगा। इन्हां तीन अवस्थावां तो हर एक नूं लंघना पैंदा, जन्म जीवन मरण। दुनिया दे कुछ ऐसे पुरुष ने, इतिहासकारां ने उन्हां दे जीवन दी कथा नूं लिखिया है। जन्म कित्थे होया सी, मां बाप कौन सन, ए भी नहीं पता। बहुत सारे भगतां दा जीवन, बहुत सारे क्रांतिकारियां दा जीवन लिखण वाले ने, इतिहासकारां नूं पता भी नहीं चल सके उन्हां दे मां बाप कौन सन, जन्म कित्थे होया सी, कदों होया सी। जन्म दी कोई छाप नहीं है, इतिहास दे जीवन दी छाप है। जो कुछ वो करदे रहे उस नाल जगत नूं कुछ मिलिया। तो इतिहासकारां ने जीवन दी फिक्र की थी, जन्म दी नहीं। फिर कुछ ऐसे ने जिन्हां दा मरना बड़ा महान सी, उन्हां दी मौत कुछ दे गई, उन्हां दी मौत दे नाल कुछ क्रांति हुई।

हस्त खेलत तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। मंदिर देच भक्ति करदे हां, प्रभु दे गीत गाउंदे हां, क्यों उठाए गए, क्यों बाहर कड्डे गए? क्योंकि शूद्र जाति दे सन, ते शूद्र जाति लई मंदिरां दा प्रवेश बंद सी। आप स्वयं कहंदे ने, हस्त खलित तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया, हीनड़ी जात मेरी जात मराया, छीपे के जन्म मुको काहे को आया। भक्ति भाव विच भिजे गीत आप जुगारे सन, ते मंदरां विच जो कथा कीर्तन होंदा सी उस दे जो सुनन दा आप दे अंदर शौक सी, लेकिन ब्राह्मणा दा जो व्यवहार सी उस तो दुख तो के आप कहिंदे ने, छीपे के जन्म मोको काहे को आया। हे प्रभु, तू छीबे दे घर मैनू जन्म क्यों दिता? क्योंकि भक्ति करन दा अख्तियार लोकी मैनू नहीं देंदे, मंदरां दे चों धक्के मार के कढ़दे ने। लै कमरे

द्वार सी उसका मुंह नामदेव जी की तरफ हो गया, मूर्तियां का मुंह नामदेव जी की तरफ हो गया और पंडियां की तरफ पिछवाड़ ला। फेर दिया नामे को देहुरा पंडियन को पिछवाड़ ला। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का भी फरमान है, हंकारियां निंदकां पिठ दे नामदेव मुख लाया। ए मंदिर गौंडा देच अज भी मौजूद है, श्री सचखंड हजूर साहब तो गालबन 40 मील की दूरी ते औरंगाबाद रोड देते एक गौंडा नाम का बहुत वड्डा तीर्थ है। इस औंडा नाम दे तीर्थ दे उत्ते ही श्री नामदेव जी महाराज ने ये प्रभु दे गीत गाए ते आप नूं तक्के मार के बाहर कढ़िया गया। ये मंदिर इतिहासक मंदिर है और कस्बे का नाम औंडा है। महाराष्ट्र दे च बेशुमार तीर्थां दे चों ये अस्थान भी तीर्थ सतल करके बहुत मशहूर है और श्री नामदेव जी महाराज का भी अस्थान इस मंदिर दे च अज बनया है। भावें आप शरीरक रूप दे जद मौजूद सन तां आप नूं धक्के मार के बाहर कढ़िया गया, लेकिन अज उन्हां दी मूर्ति मंदिर दे द्वार तों बाहर स्थापन कीती हुई है और दूरों ही पुजारी आवाज मार दें, संत नामदेव दे दर्शन करो, संत नामदेव दे दर्शन करो। लेकिन ये अजूबा पृथ्वी ते मौजूद है कि मूर्तियां दा मुंह एक पासे है, मंदिर दा मुंह दूसरे पासे है। और ये अजूबा कहिंदे ने श्री नामदेव जी महाराज करके होया, क्योंकि आप नूं जब धक्के मार के बाहर कढ़िया गया आप पिछे जा बैठे तो मूर्तियां ने भी रुख नामदेव दी तरफ ही कर लिया। खैर महाराष्ट्र देश भ्रमण करदे हां, प्रभु गीत गाउंदे हां, आप मनुखता लई एक पवित्र माहौल बना रहे सन। दरअसल भगत दा होना ही वातावरण दा पवित्र होना है। उहदे शरीर विचों जो लहरां निकलदियां ने, तिरंगा निकलदियां ने, वह आस पास के माहौल नूं पवित्र करदियां ने। जैसे कि भगत कबीर दा कहना है, कबीर सो मुख धन है जय मुख कहिए राम, देही किसकी बापुरी पवित्र होएगो ग्राम। देही दा ते कहना कि एक सुरत होके जो प्रभु गीत उचारण करने ने, प्रभु सिमरन करना है, उहदे नाल ते सारा नगर पवित्र हो जांदा है, सारा शहर पवित्र हो जांदा है। तो नामदेव ने थां थां ते महाराष्ट्र देश भ्रमण करना आरंभ कीता। इस तों बाद आपने समस्त भारत दा वी रटन कीता। दहली दे जद आप आए ते आप दे भक्ति भाव दे संगीत ने जद श्रोतियां दे मना ते अपना प्रभाव पाया ते आप दे आले दुआले बहुती भीड़ इकट्ठी हुई तां ओ पुराना झगड़ा शुरू हो गया जिन्हों कहिंदे ने सत ते सता दा झगड़ा। वक्त दे सुल्तान सिकंदर लोधी नूं इह गल रास नहीं आई कि एक व्यक्ति दे पिछे इतनी भीड़, इतना इकट्ठ। इस तों सताधारी कई दफा खतरा महसूस करदे ने कि एक व्यक्ति दे पिछे इतनी भीड़ क्यों है ते इह भीड़ किसे वक्त साडे लई दुखदाई साबित ना होवे। लिहाजा श्री नामदेव जी महाराज नूं पकड़ के हिरासत दे च ले लिया गया और सुल्तान ने कहा कि मेरे घर दी कपिला गऊ मर गई है, इस नूं तू अपनी शक्ति नाल जिवा दे ते तैनूं छड्डांगा वरना नहीं। तो नामदेव जी महाराज कहिंदे ने इह जन्म ते मरण प्रभु दे हत्थ च, हमरा किया कछु ना होए कर है राम होए है सोए। इह जन्म ते मरण राम दे हत्थ दे च है, ना के मेरे हाथ दे च है। सुल्तान क्रोध दे च आया, गुस्से दे च आया और जेल दे च नामदेव जी महाराज नूं बंद कर दिता गया। दहली दे पतवंतिया ने आखिर सोचिया कि कीमती इंसान है, भगत है और ऐसा ना होवे कि राज हठ दे सामने इस दी कीमती जान चली जाए। तो सारे पतवंते सुल्तान नूं समझाण लई गए, जद भी कदी राज हट ते भगती दा हट आपस देच टकरांदा है तो वाकई

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਹੈ। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे कार औलाद नहीं होई तां दुखी है, जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह के होर दुख हैं, इन्हां सारिया ही दुखों का जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, ऐथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
2: जी जंत सब तो दुपायक वेख परसन आया लब लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पहाया कह अमृत

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंग फ्रैजंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साल लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद साला विस्माद उजड़ विस्माद रा।

ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਅਜੇ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਦਾ ਚ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ। ਆਵਨ ਜਾਨ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆ ਗਿਆ ਕਾਰੀ ਕੀ ਨੀ ਮਾਇਆ। ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿਚਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਖੇੜੇ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮਧੁਰ ਕਲਾਮ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਜਗਤ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਵਾਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਣਾ ਔਰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਿਲੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਚ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਥਾ ਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬਣ, ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ। ਔਰ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਜ਼ੀਮ ਚਿੰਤਕ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਵਿਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਵਿਚ ਜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਝਾਤ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਵਿਚ, ਉਹ ਤੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਭਗਤ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਝਾਤ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ। ਤੋ ਇਹ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਗਤ ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਗਹਿਰਾ ਤਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ੀਚਾ ਹੈ ਇਤਫਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਨਿੰਦ ਤਿਫਲ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਖੇਲ, ਤਿਫਲ ਬੱਚਾ। ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜੋ ਕੁਝ ਜਗਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬੋ ਰੋਜ਼ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਦਿਨ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੀ, ਰਾਤ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ ਔਰੰਗੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ ਅਜਾਜ਼ ਮਸੀਹਾ ਮੇਰੇ ਆਗੇ, ਤਖ਼ਤ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਈ ਇਹ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਹੈ ਤਖ਼ਤ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤਖ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਦਿਨ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਉੱਠ ਸਕੇ, ਇਤਨੀ ਉਸਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਤਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਆਘਾਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਖ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਪਰ ਗਾਲਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤਖ਼ਤ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ,
तो उदे ले तख्ते सुलेमानी जिंदगी दा मुद्दा नहीं है, मकसद नहीं है, उदा मकसद कोई होर होवेगा, ए नहीं है। तो एक खेल है औरंगे सुलेमान मेरे नजदीक, एक बात है अजाज मसीहा मेरे आगे। आजाज मौजियां दी जमा, मौजे करामात। तो गालिब कहते हजरत ईसा दे मौजे, मौजे की कब्र ते हथ लाया है, मुर्दा जिंदा हो गया है, बीमार दे सिर ते हथ फेरे है, तंदुरुस्त हो गया है, अंधे दियां अखां ते हथ रखे है, वह सुजाखा हो गया है। गालिब हस के कहते ए भी बच्चियां दे खेल तो ज्यादा कुछ नहीं, सब कुछ एक खेल है। हजरत ईसा दे मौजे, तख्ते सुलेमानी, दिन रात दे जो कुछ हो रहा है सब कुछ एक तमाशा है। एक गल वखरी है कि जीवन दे इस महान गहरे तल नू जे महापुरुष वेख सके है, उत्थे तक पहुंचया ते नहीं, पर वेख लेना भी कोई घट नहीं है, बहुत वड्डी साधना है। एक गल वखरी है कि दिमागी साधना है, पर जिन्होंने अध्यात्मिक साधना की थी, हेमकुंड तपीश्वर ने हेमकुंड बैठ के उन्हें जीवन के गहरे तल झात नहीं मारी, वह जीवन के गहरे तल पहुंचे है, उस टिकाने ते पहुंच के कह रहा है मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं तमाशा वेखण वास्ते आया, मैं तमाशा खुद नहीं हाँ। अगर वह तमाशा खुद होंदे ते जद चार बच्चे शहीद होए ते रोंदे, ते जगत ते रोंदे आया नू वेख के हसदा, कदी रोंदे आया नू वेख के रोंदा नहीं है। इस वास्ते आम कहावत है, तुसी हसोगे जगत नाल हसेगा, पर जब तुसी रोवोगे जगत रोण नू तैयार नहीं होवेगा। रोने दी कौन सांझ पांदा है, हासे दी सांझ पांदा है। जीवन दी सारी सांझ पांदे ने, मौत दी कौन सांझ पावेगा। नफे दी सारी सांझ पांदे ने, नुकसान दी कौन सांझ पावेगा। सारे रिश्ते सुख दे ने, दुख दी रिश्तेदारी कौन जोड़ेगा। साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा फैसला, सुख में बहु संगी भय, दुख में संग न कोय, कहो नानक सुन रे मना, अंत सहाई होए। हरिदा भजन कर हे मन, कहो नानक हर भज मना, अंत सहाई होए। जगत ते सुख दा संगी है, इतना वड्डा संगी है कि सुख में आन मिलत बहु बैठत, रहत चहू दिस गेरे। बहुत लंबी चौड़ी जड़ी भीड़ है तेरे आले दुआले, किधरे ए ना समझ नहीं कि मेरे संगी साथी ने। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने नहीं, सब सुख दे साथी ने, और जिस दिन तू देखेगा कि तेरी झोली च सुख नहीं रहे, तू चिराग लेके भी ना संगियां साथियां नू ढूंढेगा, नहीं लभना, एक किसे पासे मिलने नहीं। सारा शोर शराबा, सारी भीड़, सारा वर्तन वलेवा, सारा संबंध सुख दाय, सुख में आन मिलत बहु बैठत, रहत चहूं दिस गहरे। तो साहेब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, बच्चे शहीद हो गए, पिता शहीद हो गए, ते आप दावे नाल कहंदन चाह शुद के चूं बच्चे गां कुश्ता चार, के बाकी बमान दस्त पेची दा मार, चे मर्दी के अहगर खमोशां कुनी, के आतिश दा मारा फिरोजां कुनी। की होया के बलदे हुए भांबणा दे चों चार चिनगारियां बुझ गईयां, ए सब कुछ उन्हां लई इक तमाशा। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान के प्रचलित गाथा ते ए है, और खास करके योगियां दे प्रचार दे च ए खास गल आई कि ए मादा ए माया जुगती नाल प्रसूत होई व्याई, और उस तो तीन प्रमाणिक चेलियां ने जन्म लिया, जिदे च एक संसारी है, एक भंडारी है, और एक लय करण वाला है, एक परले करण वाला है। पर हकीकत की है, साहिब कहने ज्यों तिस भावे तिवें चलावे, ज्यों होवे फुरमान। हकीकत यह है कि परमात्मा जिवें चाहुंदा है तिवें अपनी प्रकृति नूं चला रहा है, जिवें उसका हुक्म है तिवें ही जगत दे सब कुछ जो है हो रहा है, उस तो बिना होर कुछ नहीं। उस तो ही उत्पत्ति हो रही है, उस तो ही पालना हो रही है, उस तो ही नाश हो रहा है, क्योंकि उसका कोई मुद्दा नहीं, उसलिए सब कुछ तमाशा है।
उस लई सब कुछ एक खेल है। एक मिथ है बड़ी सुंदर कि एक दफा शिवजी ने प्रार्थना कीती, हे अकाल पुरख कि तू मेनू जिहड़ी सेवा बख्शी है मौत दी, मैं जिस घर विच जाना रोना पिटना शुरू हो जांदा है, ये मेनू चंगा नहीं लगता, ते मेरी सेवा बदल दित्ती जाए। जिहड़ा काम इंद्र नू सौंपिया गया बरखा करन दा, ये काम मेनू दित्ता जाए। तां परमात्मा ने आखिया, शंकर बरखा करनी तेरे सुभा दे अनुकूल नहीं, मौत करनी तेरे सुभा दे अनुकूल है, ते असी कम दिता है तेनू तेरे सुभाव दे अनुकूल। पर शिव जी ने हट कीती नहीं, जे बरखा इंद्र कर सकदा है तो मैं क्यों नहीं कर सकदा, मेरी झोली च यह सेवा पाई जाए। बहुते तरले करके हट करके परमात्मा ने यह सेवा झोली च पा दिती। अच्छा हुण आईदा तो बरखा तू करेगा। शिव जी ने यह वर प्राप्त किया, जद मैं डमरू वजावा उदो ही बरखा होवे, उस तो पहले नहीं होनी चाहती। तथा उसतू कर दिता गया, ठीक है तू डमरू वजाएगा बरखा होवेगी। मात लोग दे आए शिव जी, मिथ्यास किसान लोग हल चला रहे सन, तो शिव जी कहन लगे सुनो हल ना चलाओ, क्यों 13 साल तक मी नहीं पैना, बरखा मेरे हाथ च है, लेके वर आया है बरखा दा, कर रहा है मौत अपने सुभाव दे मुताबिक। 15 दिनां बाद जद फिर उत्थों लंघिया ते किसान बीज पै पावन, ते शिव जी गुस्से च आके कहन लगे जद मैं कह दिता है 13 साल तक मी नहीं पैना, ते बीज क्यों रोल रहे हो जमीन विच, क्यों नाश कर रहे हो, क्यों अपना नुकसान कर रहे हो। तो किसान कहन लगे जे रब चाहेगा ते बिना मी ते भी बीज उगाणगे, ते जे हुण ना भी उगे ते 13 साल बाद मी पैना है, ते 13 साल तक असी बीज बोया ना हल चलाया ना, तो असी ते हल चलाना भुल जावांगे, साडी संतान भुल जावेगी, असी खेती बाड़ी दा काम ही भुल जावांगे। थोड़े जिहा शिव जी अगे चले गए, रुख दे थले बैठे, ते ख्याल आया जे किधरे मैं 13 साल डमरू वजाया ना ते मैं वजाना भुल जावांगा। तो एकदम झोली देखो डमरू कढ़िया और उन्हूं वजाण लग पे, ते वजांदे आई मीह पै गया। गुस्से च आए भी मेरी चाहत तो बिना किस तरह होया, अलहाम होया, आकाशवाणी हुई, तू ही वर लिया सी जद मैं डमरू वजावा उदो बरखा होवे, तो हो गई है बरखा। शिवजी दे हथ जुड़ गए, कहन लगे नहीं इत्थे जो कुछ तू चाहना है ओही कुछ आउंदा है, जो कुछ असी चाहते हैं ओ कुछ नहीं आउंदा। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान पे करदे ने, ज्यों तिस भावे तिवें चलावे, ज्यों होवे फरमान, जिवें उस नूं भावदा है ते जिवें उस दा हुक्म है तिवें ही ओ जगत नूं चला रहा है, ते तिवें ही उसे तरीके नाल ही जगत विच सब कुछ हो रहा है। ओ वेखे उना नदर ना आवे बहुता ए वडाण, बहुती आश्चर्य लीला ए है कि परमात्मा सारिआं नूं वेखदा, सारे जीवां नूं वेखदा, पर सारे जीवां नूं परमात्मा नहीं दिखाई देंदा। ओह वेख रहा है लेकिन जीवां नूं ओह नहीं दिखाई दे रहा। महाराज कहिंदे मेरी दृष्टि सब तों वड्डा विडाण हैरान कुण खेल जिहड़ा है ओह इही है कि हर इक दे उत्ते निगाह रखी बैठा है लेकिन किसे जीव दी निगाह दे सामने परमात्मा नहीं, अकाल पुरख नहीं। आदेश तिसे आदेश, आदेश है सजदा है उसनू, किसनू, जो जगत दा मुड है ते जिसदा कोई मुड नहीं, और जो धबिया तो रहत है, नाश तो रहत है, ते जिसदा वेश समुचे जुगां जुगांतरां दे च इको ही है। आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश।

स्थूल शरीर बुढ़ा होके खत्म भी हो जाता है, सूक्ष्म शरीर खत्म ही नहीं होता क्योंकि वासना बुढ़ी नहीं होती। उम्मीद गल पकड़ दे चाहिए होगी। भाई साहब भाई गुरुदास जी कहते ने, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जा, मुड़ मुड़ वासना मेरे सूक्ष्म शरीर नो अस्थूल शरीर दे पांदी रहिंदी है। तो जन्म चलता रहिंदा है, जन्म चलता रहिंदा है, मरण चलता रहिंदा है इस अस्थूल शरीर दा, और एदे नाल ही सूक्ष्म शरीर तक एक आंदा रहिंदा है। जम जम मरे मरे फिर जम में, बहुत सजाए पया देश लम्मे। अस्थूल तन दी संगत करके अस्थूल शरीर दियां लोड़ां नूं ये सूक्ष्म शरीर अपनियां लोड़ां बना लैंदा है। तो तन दियां ते लोड़ां ने मन दी वासना है लोभ बन जांदी है, तन दी ते लोड़ां ने मन दी वासना है हंकार बन जाती है, तन दियां ते लोड़ां ने अदक शरीर दी शक्ति, इस तन दी शक्ति अदक हो गई है। तो कुदरत ने निकास दे साधन बनाए ने। सूक्ष्म शरीर का यह सिलसिला नहीं है, लेकिन इस वासना नो इस काम नो सूक्ष्म शरीर अपनी लोड़ बना लेंदा है। तो फिर की आंदा है, ये तन नो भ्रष्ट करन दे सफल हो जांदा है सूक्ष्म शरीर मन। इस वास्ते आयुर्वेद आचार्य ते धर्म ग्रंथ इंज कहंदे ने, 90% रोग सूक्ष्म शरीर दे ने, मानसिक ने, शरीरक नहीं ने, नहीं ने। रोग किसे होर जगह ते, उसकी बुनियाद किसे होर जगह है, इलाज किसे होर जगह कीता जा रहा है। आज तक इस संबंध च बड़े तजर्बे हुए। पहले आयुर्वेद आचार्य आए, फिर यूनानी इलाज आया, फिर एलोपैथी आई, होम्योपैथी आई, अजकल नेचुरपैथी का बड़ा जोर। भावें कुछ भी होवे रोगी तो उतने ही उतने, जो जो दिसे सो सो रोगी। नवे तो नवे हॉस्पिटल बनते जाते ने, नवे तो नवे मरीज पैदा हो रहे हैं। वड़े वड़े हस्पताल भरते जा रहे हैं, रोगियों नाल भरते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, रोग तो नहीं मिटिया। जिसका रोग जरा सीमा तो अगे चला जाता है उन्हों फिर हॉस्पिटल दाखिल करना पैंदा है। जिदा रोग अजे सीमा दे जो चलता फिरदा पे असी उसनूं तंदुरुस्त कहिंदे आ, नहीं है तंदुरुस्त। ये भी मैं अर्ज करदे आ, किधरे तंदुरुस्त ना समझ लेना। जो जो दिस है सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। स्वस्थ नहीं है ये, तंदुरुस्त नहीं है। जिते तक इसका मन स्वस्थ नहीं होया, ते पता है स्वस्थ दे अखरी अर्थ की ने, संस्कृत का शब्द है। इहदे अर्थ ते सेहत कर लैंदे ने, तंदुरुस्ती कर लैंदे ने, लेकिन संस्कृत का यह स्वस्थ शब्द बड़ी अपने विच गहराई रखता है। स्वय स्थिति ही अपने विच टिक गया, हुण मन अपने विच आनंदित हो गया, टिक गया। परमात्मा दी अंश है भाव, परमात्मा टिक गया, अपने घर टिक गया, उन्हों कहिंदे ने स्वस्थ। जो स्वय स्थित हो गया, स्वयं विच स्थित हो गया, वो फिर हो सकता है शायद तन दे तल ते भी नवा नरोवा होवे। जिन्हां नूं तुसी तन दे तल ते तंदुरुस्त देखदे हो, नहीं ने, दिखाई दे रहे ने, रोग अजे जरा सीमा च है। यह भी मैं कर दे, अजे जरा सीमा तो अगे नहीं गया। अनेकां प्रकार दे रोगां नाले देहुरी भरी हुई है, लेकिन इहदियां जड़ां सूक्ष्म शरीर दे च ने।

मन दे चने। अस्थूल शरीर दे चो रोग निकलन आयुर्वेद आचार्य अगे आए, होम्योपैथी आई, यूनानी इलाज आया, एलोपैथी है, और बड़े यतन ने, लेकिन गुस्ताखी माफ, मनुख दा मन किवें स्वस्थ होवे, स्वय स्थित अपने विच टिके, इहदे कोई मनुख उद्यम भी नहीं करता, यतन भी नहीं करता, समा भी नहीं कढ़दा, इहदी लोड़ भी नहीं समझदा। तो होंदा की पे है, रोज रोज मनुख दा मनमई कोश विज्ञानमई कोश रोगी होंदा जा रहा है। इनू विज्ञानमई कोश क्यों कह, इहदे च शक्तियां बड़ियां ने, इहदे च बड़ा कुछ है, बशर्ते इसनू सुचेत करिए। तन दी संगत करदिया करदिया, चूंकि तन जड़ है तो सूक्ष्म शरीर भी अचेत हो गया है। जैसी संगत वैसी रंगत, संगत दा असर है। ये पंजे दे पंजे तत् जड़ ने, जड़ दी संगत करदिया करदिया सूक्ष्म शरीर भी जड़ हो गया, भाव अचेत हो गया, सौ गया। तो मैं कई दफा अर्ज की है, वाहेगुरु वाहेगुरु दा जप, वाहेगुरु नु सुनान वास्ते नहीं, इस सुती हुई चेतना नु जगाण वास्ते, इस सुते हुए मन नु जगाण वास्ते। सिमर सिमर गुर सत गुर अपना, सोया मन जागाई। ये कितना जपिए, बारंग बार बार प्रभ जपिए, जपी जा जपी जा, उतने चिर तक जपी जा जितने चिर तक मन पूरा जागदा नहीं। पूर्ण तौर ते जागया होया मनुख सूक्ष्म तल ते महाराज कहंदे ने, इस ग्रह में कोई जागृत रहे, इस ग्रह में कोई जागृत रहे, साबत वस्तु ओ अपनी लवे। साबत वस्तु की परमात्मा, परम रस परम आनंद। ये किसनों प्राप्त होंदा है, जेदा मन पूर्ण तौर ते जाग गया। कहिंदे ने एक भाग ही जागे, मन दे नौ भाग सुते पे ने, तो उस एक भाग नु थोड़ा जिहा पदार्थां दा बोध है, थोड़ा जिहा संसार दा बोध है, बाकी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इस वसे गुरबाणी एक होर शब्द वर्दी है, जागत सोया जन्म गवाया। ये जागदा दिखाई दे रहा है जबकि टोटली सुता पे है, कोई परमात्मा का पता नहीं, कोई परम रस का पता नहीं, कोई समाधि का ज्ञान नहीं, कोई प्रेम का पता नहीं, कोई उस महान चानण का पता नहीं। जागत दिखाई दे रहा है, जागदा सोया, इति सूक्ष्म शरीर के तल ते सोया होया, सुता होया। जागत सोया जन्म गवाया, वाहेगुरु वाहेगुरु दे जप नाल जद कोई सूक्ष्म शरीर नूं अद तों वद जगा लैंदा, ऐसे मनुख नूं कोई गैबी शक्तियां मिल जांदियां ने, जिन्हों रिधियां सिधियां भी कह देंदे। ऐसा मनुख उस सूक्ष्म शरीर नूं अपने शरीर दे चों कढ भी सकदा है, किधरे लै जा भी सकदा है, फिर वापस लिया सकदा है। तुसी आखोगे मैं की आखदा पिया, साडे गुरमत दे च भी ऐसा हुंदा रहा, बाबा राम राय करदे रहे, हर दूजे तीजे महीने ऐसा कर लैंदे सन, फिर वापस आ जांदे सन। एक दफा अपनी पत्नी नूं कहा, मैं एक हफ्ते बाद आना है, मेरे इस देही दा ख्याल रखें, मेरे शरीर दा ख्याल रखें, क्योंकि कुछ मसंद मेरे दुश्मन ने ते मैनू मुर्दा जान के किधरे होर अनर्थ ना कर बैठन। पत्नी ने कहा, मैं दसांगी नहीं किसे नू, लेकिन मसंदा नू पता चल गया। तीसरे दिन
ਉੱਥੇ ਅਰਥੀ ਸਜਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਬਈ ਰਾਮ ਰਾਏ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਚਿਤਾ ਜਲਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸੰਦ ਬਹੁਤੇ ਸਨ, ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਸੰਦ ਅੱਜ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਿਤਾ ਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਫਨ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਚਲੇ। ਰੁਦਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਮਸਨ, ਚੇਤਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਜਲ ਗਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਥਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਜਦ ਜਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਹੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੱਧੇ ਜਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ, ਐ ਮਸੰਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾਦੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਨ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਜਾਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਡਨ ਮਿਸ਼ਰ ਜੋ ਮਾਂਡਲਾ ਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਂਡਲਾ ਹੈ, ਮੱਧੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਮਾਂਡਲਾ, ਇੱਥੇ ਮੰਡਨ ਮਿਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਤੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਇੱਧਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਡਨ ਮਿਸ਼ਰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਕੋਲ ਹਾਰ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ, ਚਾਰ ਮੱਠ ਇਸਨੇ ਬਣਾਏ ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਜੁੜ ਗਈ, ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਂ ਉਖੜ ਗਏ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਕਰਕੇ ਬੌਧ ਧਰਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੁਛ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨਸ ਗਏ, ਤਿੱਬਤ, ਬਰਮਾ, ਲੰਕਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਾਈਨਾ, ਜਾਪਾਨ, ਸਾਰਾ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬੋਧੀ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਗਿਰਾਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਅਤਵੈਤਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਜੁੜ ਗਈ, ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੋ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਲੜਾਕ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੋ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਮੰਡਨ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਖਿਆ, ਮੰਡਨ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਤਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਹਾਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੰਡਨ ਮਿਸ਼ਰ ਜਦ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਰ, ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ,
मैं कुछ बहुत एक जरूरी जिया विचार भी इस दे थोड़े सामने पेश करन लगा, उन्हों भी ध्यान पूर्वक सरवण कर लेना। मंडन मिश्र दी पत्नी अगे आ गई, कह लगी शंकराचार्य नूं, ऐ जगत गुरु एक गल सुनो, ग्रस्ती ही पूरन होंदा है पत्नी नाल, तुसी मंडन मिश्र नूं हराया, अर्ध शरीर नूं हराया, पूरे नूं नहीं, मैं मौजूद हाँ, मैनूं हराओ, तां मंडन मिश्र दी हार होवेगी वरना नहीं। इस तरह तुसी अपनी जित दा नारा नहीं ला सकदे, इस तरह मंडन मिश्र थानू ग्रंथ नहीं पेश करेगा, वह थोड़े कदमों ते झुक के हार नहीं तस्लीम करेगा, तुसी मैनूं हराओ। शंकराचार्य कहन लगे ठीक है, विचार दा विशा पहले तो रखना है कि मैं रखा। मंडन मिश्र दी पत्नी कहन लगी हुण मैं रखांगी, पहले उन्हें कामसूत्र अगों रख दिता। शायद आपनों पता होवे ऋषि वात्सायन होए ने जिन्होंने सिर्फ काम दे उते ग्रंथ लिखे, उन्हों कामसूत्र कहिंदे। उस वक्त दे बड़े बड़े आचार्य संत महंत जद मन ऋषि वात्सायन नूं, क्योंकि ऋषि सी बड़ा अभ्यासी समाधि लीन, उन्हों आख्या गया ये तू किस विषय ते लिख रहे हैं। उन्हें बड़ी प्रबल दलील दिती, लोभ ते लिखिया भी जा सकता है, बोलिया भी जा सकता है, ते लोभ कर करके जो लोग भ्रष्ट होए ने वह भी बोलिया जा सकता है, हंकार ते लिखिया भी जा सकता है, बोलिया भी जा सकता है, और हंकार जिन्हां नूं हिंसक बना देंदा है ते महान जालम बना देंदा है ते अनर्थ करदे ने, इस ते भी बोलिया जा सकता है, क्रोध ते भी बोलिया जा सकता है, मोह ते भी बोलिया जा सकता है, पर काम जिहड़ा स्त्री नूं गनका बना देंदा है ते पुरुष नूं बलात्कारी बना देंदा है, अगर सीमा तो अगे हो जाए, क्यों नहीं बोलिया जा सकता, क्यों नहीं लिखिया जा सकता। ऋषि वात्सायन, या ते कहो हर एक दा काम सीमा चाहे कोई भ्रष्ट नहीं आउंदा, कोई पुरुष बलात्कारी नहीं, कोई स्त्री गनका नहीं, गुस्ताखी माफ, सारी दुनिया दे धन खतरे च है, जान खतरे च है, स्त्री दी असमत इज्जत आबरू खतरे च है सारी दुनिया च, क्यों? जिन्हां दा अहंकार सीमा तो वध गया वो किसी दे लई भी जान दा खतरा बन सकदे ने, जिन्हां दा लोभ सीमा तो अगां वध गया वो किसी दी धन संपदा लई खतरा बन सकदे ने, किसी दा काम सीमा तो अगे चला गया वो किसी दी भी इज्जत आबरू असमत लई खतरा बन सकदे ने। तुसी एक शहर दा भी नां नहीं लै सकदे, ये तीन खतरे इस शहर दे च नहीं ने, हर जगह ने, हर जगह ने। वात्सायन कहिंदे ने मैं इस विषय ते बोलांगा, इस वास्ते बोलांगा कि गनकापन जो स्त्री दे तल ते पैदा हुंदा है खत्म होवे, बलात्कारी तल जो पुरुष दे तल ते आउंदा है खत्म होवे। सारी दुनिया दे च वख वख साजो समान दे बाजार ने, सब्जी मंडी है, लोहा मंडी है, क्लॉथ मार्केट आउंदी है, सारी दुनिया च स्त्रियां दे बाजार भी ने जिथे स्त्री दी असमत बिकदी है, इज्जत बिकदी है, सारी दुनिया च इत्थे मनुख है, इंसान है, पुरुष दा बलात्कारी होना, इस तरह दा स्त्री दा गनका हो जाना, ये दोहां दे तालमेल तो इस तरह दा होया है। आप दी ग्यातली अर्च करां, दसम ग्रंथ विच एक भाग सतगुरु ने इस ते लिखे है, गुरु गोबिंद सिंह ने, जिस दे उते बड़ा रोला पाया कईआं ने, गुरु गोबिंद सिंह ऐसा नहीं लिख सकते। मैं उन्हां नूं जवाब दिता, हिंदू जगत विच एक ऋषि लिखदा है उन्हों ते वह ऋषि कहिंदे ने, संत कहिंदे ने, ते दसम ग्रंथ दे बोल पढ़ के थोड़ियां उंगलियां उठ जांदियां ने गुरु गोबिंद सिंह ते, इस दलील दा कोई जवाब नहीं सी। विवाद चलदा पे है और जिन्हां जिन्हां ने लिखे है
करीबन करीबन अकाल तख्त तो तनखाइया करार दिते गए। मैं फिर अर्ज करा, जे मोह ते बोलिया जा सकता है, लिखिया भी जा सकता है, मोह मनुख नूं ब्रश कर देंदा है। मोह तो मुराद मेरा, यह सिर्फ मेरा है, इस वास्ते मैनूं चंगा लगता है। मैनूं अपना करूप बच्चा भी चंगा लगता है, पड़ोसी का सुंदर भी नहीं चंगा लगता, क्योंकि जो मेरा है उस नाल मोह है, जो पड़ोसी का उहदे नाल मेरा मोह नहीं। मैनूं अपना औगणहारा बच्चा भी चंगा लगता है क्योंकि मोह है, पड़ोसी का गुणवान बच्चा भी चंगा नहीं लगता क्योंकि मोह मेरा, वह मेरा है ही नहीं। तो यह मोह भी बड़ा भ्रष्ट करता है। मेरा जो मेरा है यह उस नाल इंसाफ करता है, जो मेरा नहीं है उस नाल बेइंसाफी करता है, उस नाल इंसाफ नहीं करता। इस वास्ते मोह भी मनुख नूं भ्रष्ट करता है, हंकार भी मनुख नूं भ्रष्ट करता है, लोभ भी मनुख नूं भ्रष्ट करता है, काम भी मनुख नूं भ्रष्ट करता है, और क्रोध भी इतना कठोर मनुख नूं बना देता है, बड़े बड़े अनर्थ करवा देता है। मंडन मिश्र की पत्नी ने काम सूत्र की चर्चा छेड़ी और कह दिता शंकराचार्य नो, या ते कहो चार ही विषय ने, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, पंजवा है ही नहीं, ते जे पंजवा है तो मैं इहदे नाल इहदी थोड़े नाल चर्चा करनी है। वह बेचारा बाल ब्रह्मचारी शंकराचारी, काम दियां बारीकियां दा उसनों बोध नहीं सी, काम असीम हो सके अभ्यास कर करके उस सारी बिरति नूं राम दा रस बना चुकिया सी, समाधि लीन सी पुरुष। काम सीमा तो वध होवे ये उसकी जिंदगी च हो नहीं सकता सी, और काम दा रूप बदल गया सी, काम राम दे च बदल गया, काम रस राम रस बन गया, नाम रस बन गया। ये भी किसी वक्त मैं थोड़े सामने खोलांगा। तो इसनु कोई अनुभव नहीं सी। तो मंडन मिश्र की पत्नी कह लगी, या तो हार कबूल करो, अपने ग्रंथ मेरे हवाले करो, या जिहड़े सूत्र मैं रखे ने इहदा खुलासा करो, जवाब दो। पता है शंकराचार्य ने हाथ जोड़ के आखे, मैनू घट तो घट 4 महीने की मोहलत दे दे, 4 महीने बाद फिर चर्चा करांगे। तू मंडन मिश्र की पत्नी है, एक महान विद्वान दी, इतना मौका मैनू दे। एक स्त्री दे अगों वक्त दा ओ पुरुष जिहदे नाल लकब जुड़िया है जगत गुरु शंकराचार्य, ओ पुरुष जिसने बौद्ध धर्म दे पैर हिंदुस्तान दे चुखाड़ के रख दिते, ओ पुरुष जो महान विद्वान सी जिसने 4 मठ बनाए ने, जिथों हिंदू धर्म बारे फैसला आउंदा है। शायद आपनू पता होवे, जद इंदिरा गांधी जगन्नाथपुरी दर्शन करन वास्ते गई, पुजारियां ने रोक दिता, तेरा पति फिरोज खान सी, इस मंदिर दे केवल जैन बौद्ध सिख ते हिंदू जा सकते हैं, पुजारियां ने रोक दिता। ये पेपर सी टीवी ते, बच्चे बच्चे दी जबान ते उस वक्त चढ़ी गल। इंदिरा कहण लगी, तुसी धर्म दे मुखी नहीं हो, 4 मठां तो पहले फैसला कराओ मैं जा सकती हां कि नहीं जा सकती। उन्हां 4 मठां दे जो बैठे हुए ने मुखी, उन्हां नूं शंकराचार्य कहा जांदा है अज दे, क्योंकि शंकराचार्य दी गद्दी ते बैठे ने, 4 मठ उन्होंने बनाए सन। जिमें तख्त अकाल तख्त धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने बनाया, उत्थों के सिरमौर नो अकाल तख्त का जथेदार कहते हैं, वो 4 जड़े मठ ने उन्होंने मुखिया नो अज भी जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, अज भी चारा ने फैसला दे दिता। वैसे एक का फैसला भी काबले कबूल होंदा है, चारा ने फैसला दे दिता नहीं जा सकते, खाली हथ वापस आना पे,
ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸੀ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

की जानै। जब उदकरह करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जे ते बदन सृष्ट सब धारै, आपे अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पेहव न पावत बेदा। ताको कृपाहन अनुमानत, महामूढ़ काश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेर जिसे तदकीनी, उत्पुज खान बाहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर एकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाय अचम भाव, याद जुगाद स्वरूप स्वयं भाव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बार सिख संगरो। दुष्ट जित उठ वत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस्तो तब सरणी पारे, तनके दुष्ट दुख तुहै मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे, तनके तुम संकट सब टारे। जो